0: मुजफ्फर को महाबत अपनी जिस कदर इसके मुकद्दर में है सब मिल जाए।
1: आपकी समातों से टकराती ये आवाज़ यूसीपी की दुनिया FM 92.6।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: अस्सलामु अलैकुम ख्वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हयात तय्यबा की 12वीं नशिस्त के साथ कासिम भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम सीरत नबी के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। 3 साल शेबे अबी तालिब में गुजर गए, इसके बाद सहीफा चाक किए जाने और इस जालमाना अहदो पैमान को ख़त्म किए जाने का वाकया पेश आया। इसकी वजह यह थी कि शुरू ही से कुरैश के कुछ लोग अगर इस अहदो पैमान से राजी थे तो कुछ नाराज भी थे, और इन्हीं नाराज लोगों ने इस सहीफे को चाक करने की तगोदो की। इसका असल मुहर्रक कबीला बनू आमिर बिन लोई का हश्याम बिन अमरू नामी एक शख्स था। ये रात की तारीकी में चुपके चुपके शेबे अबी तालिब के अंदर गल्ला भेजकर बनू हाशिम की मदद भी किया करता था। ये जहीर बिन अबी उमैया मखजूमी के पास पहुंचा। जहीर की माँ आतिका अब्दुल मुतलिब की साजादी यानी अबू तालिब की बहन थी, और उसने कहा, जहीर क्या तुम्हें ये गवारा है कि तुम तो मजे से खाओ पियो और तुम्हारे मामू का वो हाल है जिसे तुम जानते हो।

0: 80 साल से मुतजावज हो चली थी। कई साल से पे दर पे संगीन अलामो हवादिस ने और खसूसन महसूरी ने इन्हें तोड़ कर रख दिया था। उनकी कमर टूट चुकी थी। चुनाचे घाटी से निकलने के बाद चंद ही महीने गुजरे थे कि इन्हें सख्त बीमारी ने आन पकड़ा। इस मौके पर मुशरिकीन ने सोचा कि अगर अबू तालिब इंतकाल कर गए और इसके बाद हमने इसके भतीजे पर कोई ज्यादती की तो बड़ी बदनामी होगी। इसलिए अबू तालिब के सामने ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मामला तय कर लेना चाहिए। इस सिलसिले में वो बाज ऐसी रियायतें भी देने के लिए तैयार हो गए जिस पर अब तक वो राजी ना थे। चुनाचे इनका एक वफ्त अबू तालिब की खिदमत में हाजिर हुआ और ये इनका आखिरी वफ्त था। इब्ने इसहाक वगैरह का बयान है कि जब अबू तालिब बीमार पड़ गए और कुरैश को मालूम हुआ कि उनकी हालत गैर होती जा रही है तो इन्होंने आपस में कहा कि देखो, हमजा और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का दीन कुरैश के हर कबीले में फैल चुका है, इसलिए चलो अबू तालिब के पास चलें कि वो अपने भतीजे को किसी बात का पाबंद करें और हमसे भी इनके मुतालिक अहद ले लें, क्योंकि वल्ला हमें अंदेशा है लोग इसकी वफात के बाद हमारे काबू में ना रहेंगे। एक रवायत ये है कि हमें अंदेशा है कि ये बूढ़ा मर गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के साथ कोई गड़बड़ हो गई तो अरब हमें ताना देंगे, कहेंगे कि इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को छोड़े रखा और इसके खिलाफ कुछ करने की हिम्मत ना की, लेकिन जब इसका चचा मर गया तो इस पर चढ़ दौड़े। बहरहाल कुरैश का ये वफ्द अबू तालिब के पास पहुंचा और इनसे गुफ्तगूशनीद की। वफ्द के अरकान कुरैश के मुअज्ज़ज़ तरीन अफराद थे। कुरैश के मुअज्ज़ज़ तरीन लोगों को मिलाकर इस वफ्द की तादाद तकरीबन 25 थी। सामईन, यहां पर लेते हैं छोटा सा वक्फा। वक्फे के दौरान आप सुनेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। वक्फे के बाद हाजिर होंगे और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: सामईन, वक्फे पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुरैश के वफ्द की, जो कि अबू तालिब की खिदमत में पेश हुआ था। अबू तालिब की खिदमत में पेश होने के बाद कुरैश के वफ्द ने कहा, ए अबू तालिब, हमारे दरमियान आपका जो मर्तबा व मकाम है, इसे आप बखूबी जानते हैं, और अब आप जिस हालत से गुजर रहे हैं वो भी आपके सामने है। हमें अंदेशा है कि ये आपके आखिरी अय्याम हैं। इधर हमारे और आपके भतीजे के दरमियान जो मामला चल रहा है, इससे भी आप वाकिफ हैं। हम चाहते हैं कि आप इन्हें बुलाएं और इनके बारे में हमसे कुछ अहदो पैमान लें, और हमारे बारे में इनसे अहदो पैमान लें, यानी वो हमसे दस्तकश रहें और हम इनसे दस्तकश रहेंगे। वो हमको हमारे दीन पर छोड़ दें और हम इनको इनके दीन पर छोड़ दें। इस पर अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को बुलवाया और आप तशरीफ लाए तो कहा, भतीजे, ये तुम्हारी कौम के मुअज्जज़ लोग हैं, तुम्हारे ही लिए जमा हुए हैं। ये चाहते हैं कि तुम्हें कुछ अहदो पैमान दे दें और तुम भी इन्हें कुछ अहदो पैमान दे दो। इसके बाद अबू तालिब ने इनकी ये पेशकश जिक्र की कि कोई भी फरीक दूसरे से तआरुज़ ना करे। जवाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने वफ्द को मुखातिब करके फरमाया, आप लोग ये बताएं कि अगर मैं एक ऐसी बात पेश करूं जिसके अगर आप कायल हो जाएं तो अरब के बादशाह बन जाएं और अजम आपके ज़ेर नगी आ जाएं, तो आपकी राय क्या होगी? बाज़ रवायतों में ये कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अबू तालिब को मुखातिब करके फरमाया, मैं इनसे एक ऐसी बात करना चाहता हूँ जिसके ये कायल हो जाएं और अब इनके ताबे फरमा बन जाएं और अजम इन्हें जुज़िया अदा करें। एक और रवायत में ये मस्कूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, आप क्यों ना इन्हें एक ऐसी बात की तरफ बुलाएं जो इनके हक में बेहतर है। इन्होंने कहा, तुम इन्हें किस तरफ बुलाना चाहते हो? आपने फरमाया, मैं एक ऐसी बात की तरफ बुलाना चाहता हूँ जिसके ये कायल हो जाएं तो अरब इनका ताबे फरमान बन जाएं और अजम पर इनकी बादशाहत कायम हो जाए। इब्न इसहाक की एक रवायत ये है कि आपने फरमाया, आप लोग सिर्फ एक बात मान लें जिसकी बदौलत आप अरब के बादशाह बन जाएंगे और अजम आपके ज़ेर नगी हो जाएंगे। बहरहाल, जब ये बात आपने कही तो वो लोग किसी कदर तवक्कुफ में पड़ गए और सटपटा से गए। वो हैरान थे कि सिर्फ एक बात जो इस कदर मुफीद है, इसे मुस्तरद कैसे कर दें। आखिरकार अबू जहल ने कहा, अच्छा बताओ तो वो बात क्या है? तुम्हारे बाप की कसम, ऐसी एक बात क्या, 10 बातें भी पेश करो तो हम मानने को तैयार हैं। आपने फरमाया, आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहें और अल्लाह के सिवा जो कुछ पूजते हैं इसे छोड़ दें। इस पर इन्होंने हाथ पीट पीट कर और तालियां बजा बजा कर कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, तुम ये चाहते हो कि सारे खुदाओं की जगह बस एक ही खुदा बना डालो। वाकई तुम्हारा मामला बड़ा अजीब है। फिर आपस में एक दूसरे से बोले, खुदा की कसम, ये शख्स तुम्हारी कोई बात मानने को तैयार नहीं, लिहाजा चलो और अपने अबाओ अजदाद के दीन पर डट जाओ यहाँ तक कि अल्लाह हमारे और इस शख्स के दरमियान फैसला फरमा दे। इसके बाद इन्होंने अपनी अपनी राह ली। इस वाक्य के बाद इन्हीं लोगों के बारे में कुरान मजीद की ये आयत नाजिल हुई, सौद, कसम है नसीहत भरे कुरान की, बल्कि जिन्होंने कुफर किया हेकड़ी और जिद में है। हमने कितनी ही कौमें इनसे पहले हलाक कर दी और वो चीखे चिल्लाए, लेकिन उस वक्त जबकि बचने का वक्त ना था। इन्हें ताज्जुब है कि इनके पास खुद इन्हीं में से एक डराने वाला आ गया। काफिर कहते हैं कि ये जादूगर है, बड़ा झूठा है, क्या इसने सारे माबूदों की जगह बस एक ही माबूद बना डाला? ये तो बड़ी अजीब बात है। और इनके बड़े ये कहते हुए निकले कि चलो और अपने माबूदों पर डटे रहो, ये एक सोची समझी स्कीम है, हमने किसी और मिल्लत में ये बात नहीं सुनी, ये महज घड़ंत है। इधर अबू तालिब का मर्ज बढ़ता गया और बिलाखिर वो इंतकाल कर गए। इनकी वफात शेब अबी तालिब की महसूरी के खात्मे के 6 माह बाद रजब में हुई। एक कौल ये भी है कि इन्होंने हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की वफात से सिर्फ 3 दिन पहले माह रमजान में वफात पाई। सही बुखारी में हजरत मुसैब से मरवी है कि जब अबू तालिब की वफात का वक्त आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास तशरीफ ले गए। وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب، کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لوگے؟ پھر یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی یہ تھی کہ عبد المطلب کی ملت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، آپ جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر حمایت و حفاظت کی تھی۔ وہ در حقیقت مکے کے بڑوں اور احمقوں کے حملوں سے اسلامی دعوت کو بچاؤ کے لیے ایک قلعہ تھے، لیکن وہ بذات خود اپنے بزرگ ابا و اجداد کے ملت پر قائم رہے، اس لیے مکمل کامیابی نہ پا سکے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے کیا کام آ سکیں، کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے اور ان سے لڑائی مول لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا، وہ جہنم کی ایک چھچلی جگہ میں ہیں، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈے میں ہوتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا، ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک کم گہری جگہ میں رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کریں گے۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया, FM 92.6।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।

0: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
0: एक नई लगन।
1: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
1: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
1: UCP की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए, एक नया अंदाज,
0: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
0: एक नई लगन।
1: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
1: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
1: UCP की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए,
2: अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। इस प्रोग्राम के जरिए हम बात करते हैं फैकल्टी मेंबर्स से, उनकी अचीवमेंट के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, PR, एड, फिल्म, TV के बारे में, और बहुत सारी नई नई मालूमात के बारे में। आज हमारे साथ प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद हैं, उनका ताल्लुक विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन से है। वो बेसिकली एक ट्रेनर भी हैं, डिजाइनर भी हैं, एजुकेटर भी हैं, और वो विजुअल कम्युनिकेशन में बहुत महारत रखती हैं। So without any delay, I'm going to introduce you guys with Ms. Maryam Idris, lecturer, Faculty of Media and Mass Communication. Assalamu alaikum.
3: Waalaikum assalam. कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
3: अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह।
2: मुझे ये बताएं कि आपका बेसिकली, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन अभी करवाया कि आप विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन में बहुत एक्सपर्टीज रखती हैं, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? कहाँ सोचा, कब सोचा कि मुझे विजुअल कम्युनिकेशन में कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ में ग्राफिक डिजाइनिंग में कुछ करना है?
3: पहले तो आपको मैं ये चीज बता दूं कि मैं विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन मेरा एक पैशन था स्टार्ट से ही। मैं ड्रॉइंग मेरी बहुत ज्यादा अच्छी थी, तो मैंने शुरू से ही इस चीज को अपने अंदर देखा, बाय बॉर्न कह लें, गिफ्टेड है ये चीज। तो मैंने इस चीज को देखने के बाद, मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको भी था कि इसको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है इसमें, तो आप क्यों ना इसी फील्ड को ज्वाइन करो। तो मैंने इस फील्ड को इस तरह से ज्वाइन किया कि मैंने अपना जो इसमें करियर है वो भी इसी में ही अपने आप को परसू किया। और सबसे पहले मैंने इसमें जो है आर्ट वर्क करना स्टार्ट किया। मैं शुरू से पेंटिंग बहुत करती हूँ और विजुअल आर्टिस्ट भी हूँ, तो इस वजह से मैंने उसमें जितना भी वर्क है वो किया है। उसके बाद जब मैंने इसको प्रोफेशनली लिया अपनी स्टडीज में, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसमें कुछ प्रोफेशन में कुछ करूं। तो पेंटिंग तो मेरी हॉबी है और जो है वो एज अ पैशन भी है, वो मैं करती हूं, कैलीग्राफी भी करती हूं। लेकिन जो विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन है वो बेसिकली मेरा इंटरेस्ट, बहुत वास्ट सब्जेक्ट था ये, तो मेरा इंटरेस्ट भी बहुत था, तो मैंने इसको एज अ प्रोफेशन अपनी स्टडीज इसमें की। फिर उसके बाद जब मैंने इसमें BFA कर लिया, तो उसके बाद मैंने फिर मास्टर्स भी इसी में, MFA भी इसी में किया। तो इसी तरह से मेरा जो करियर है वो स्टार्ट हुआ प्रोफेशनली। इसमें मैंने किस तरह से अपने आप को परसू किया और इनहेंस किया चीज़ों के थ्रू, और मैंने सीखा, क्योंकि लर्निंग जो है वो प्रोसेस चलता रहता है लाइफ के साथ। तो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप जिस एज में भी हैं, जिस टाइम में भी हैं, आप लर्निंग प्रोसेस चलता ही रहता है, आप सीखते रहते हैं।
2: अच्छा, अब जैसे आप बात कर रही थी विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में कि आपको बहुत इंटरेस्ट था, आप पेंटिंग करती थी, आप कैलीग्राफी करती हैं, तो एक्चुअली में विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन होता क्या है, क्या ये
3: एक्चुअली हम अगर डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन को देखें, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है ये, कि आपको कोई ऐसी चीज के आपने कुछ बनाना है, कुछ क्रिएट करना है, एक प्रॉब्लम की तरह आपके पास, आपने उसको किस तरह से विजुअली या एस्थेटिकली उसको किस तरह से डिजाइन करना है, बताना है, विजुअल कैसे क्रिएट करना है, ताकि आप अपना मैसेज जो है वो आप ऑडियंस तक को कन्वे कर सकें। बेसिकली इसके अंदर जो है विजुअल्स, आप वो देखेंगे तो उसके अंदर आपके पास टाइपोग्राफी एक टाइप फेस होते हैं जो कि यूज होते हैं इसमें विजुअल डिजाइन में, वो यूज होते हैं। कलर थ्योरी होती है इसके अंदर, और बहुत इस तरह के मीडियम है जो कि हम कंबाइन करके उसको विजुअल्स को क्रिएट करते हैं, 2D सरफेस पे, 3D मोशंस में होते हैं। और इसमें बेसिकली जितना भी आपके पास मटेरियल है, वो सब आप आपकी स्थेटिक आपकी जो है वो काम करनी चाहिए, उससे आप जो है वो गो थ्रू करके इसको बनाते हैं। और मैं एक चीज यहाँ पे कहूंगी कि ग्राफिक डिजाइन बेसिकली विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन की ही एक वो है फॉर्म। इसमें आप जितना अपने आप को, जरूरी नहीं है कि आप एक आर्टिस्ट हो या आपके अंदर आप कुछ भी जो भी एस्थेटिकली अपने माइंड में खूबसूरती को सराहता है, ऑफकोर्स हर एक को ही पसंद है ये चीज, तो जैसे ही आपको ये चीज लाइक करती है या क्लिक करती है तो आप इसमें जरूर कोई भी इसमें वो कर सकता है इसमें काम ना। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप आर्टिस्ट नहीं है तो आप आर्टिस्ट हैं तो आप कर सकते हैं। हर कोई जिसमें एस्थेटिकली सेंस है इस तरह के काम करने की वो डिजाइन में काम कर सकता है।
2: अच्छा मरियम, अभी आप जैसे बता रही थी ग्राफिक डिजाइनिंग भी इसी से मिलती जुलती है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग और विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है?
3: नहीं, इनको एक ही कहेंगे लेकिन उसमें भी कम्युनिकेशन ही है, ठीक है। इसमें ग्राफिक का मीन्स कि आपके पास एक आप ऐसी एक सर्फेस के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके ऊपर आपने अपना मैसेज कन्वे करना, तो उसको किस तरह से 2D और 3D से मैसेज अपना कन्वे करना है आपने, तो वहां पे आप ग्राफ को बनाते। जाहिर है आपने जब पुराने जो टाइम है ओल्ड टाइम्स में अगर एरा में देखें तो ग्राफ का मीनिंग यही होता था कि आप पुराने कोई टाइम में कोई काम कर रहे हैं तो उसको किस तरह ग्राफिकली विजुअल्स के थ्रू आप अपनी एक्सप्लेन करते थे लैंग्वेज को। लैंग्वेज उस वक्त यही यूज होती थी केव आर्ट के टाइम में, तो उसकी वजह से आगे जो है उसको हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, उसको ग्राफिकली बना के कैसे कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हम ब्रांडिंग करते हैं किसी भी चीज की, तो उसको हमने ब्रांडिंग की थ्रू आउट उसमें जो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें हमारी कलर थ्योरी आ जाती है, हमारे कलर्स के अलावा हमारे टाइपोग्राफी इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें मिला के ही डिजाइन को बनता है। और इसको विजुअल अगर देखें तो विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन बेसिकली ग्राफिक डिजाइन की एक फॉर्म है।
2: और इसकी ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग कितनी जरूरी होती है?
3: ये डिपेंड करता है कि आप अगर अपने आप को मार्केट में, कुछ लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता इस चीज के अंदर और कुछ लोग ब्रांड अपने लॉन्च करते हैं या उसकी ब्रांडिंग करते हैं उसकी स्ट्रेटेजी को देखते हुए, हम इस तरह रिकमेंड करते हैं कि आप किसी भी इदारे में या खुद से अगर आप कर रहे हैं तो लर्न कर रहे हैं। कुछ लोग तो यूट्यूब चैनल से भी लर्न करते हैं, हमारे यहाँ पे यूसीपी में आपने देखा जैसे विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन में हमारे स्टूडेंट्स इतनी महारत हासिल करके कैंपेन डिजाइन कर रहे हैं, उसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उसको लॉन्च कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो इसी तरह से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमारे पास डिफरेंट एस्थेटिकली उसको बनाने के बाद अपनी प्रोडक्ट्स को किस तरह से लॉन्च कर रहे हैं, तो ये काम सिर्फ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बेस ही हो सकता है, क्योंकि जिसमें आपका इंटरेस्ट है अगर आप प्रोफेशनली उसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो इट्स वेल एंड गुड।
2: थैंक यू सो मच फॉर सच एन इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन ओवर द थिंग के किस तरह से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप लोग सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। इसी के साथ हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।
0: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
2: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6, मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मिस मरियम इद्रीस, जो कि लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन है और विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन की एक्सपर्ट है। ब्रेक में जाने से पहले जैसे मरियम हम बात कर रहे थे विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन की, ग्राफिक डिजाइनिंग की, और आप इसका डिफरेंस बहुत अच्छे से बता रही थी, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन की जब बात होती है इसके लिए कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज किए जा रहे होते हैं?
3: एक्चुअली इसके लिए जो है ना वो अडॉप्ट प्रीमियर और अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर, ये सॉफ्टवेयर जो है प्रोफेशनली यूज किए जा रहे हैं। लेकिन आजकल AI का थोड़ा दौर है, हमारे पास एरा है और उसमें सब जो है AI से रिलेटेड जैसे कैनवा यूज कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक काम आप स्टार्ट करते हैं वो इन प्रोफेशनल वर्क जो है वो इसी पे ही होता है। चाहे आप ये देखें कि AI आ भी गया है लेकिन फिर भी इनकी अभी जो है इम्पोर्टेंस वो कम नहीं हुई। आप जब भी AI से कोई चीज जनरेट करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ कर रहे हैं, जैसे Midjourney पे आप इमेजेस जनरेट कर रहे हैं, जैसे आप Leonardo AI यूज कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है ChatGPT और हमारे पास इससे रिलेटेड जो बाकी Gemini है, ये सब यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब बहुत ज्यादा फास्ट काम हो गया है और मेरे ख्याल से अब के दौर के अंदर जो है जो एक्सपर्ट है इस चीज का भी वो माना जा रहा है, वो अपने आप को मनमार है मार्केट के अंदर। तो मेरे ख्याल से आपको 3D में सोचना चाहिए, आपको 3D में होके काम करना चाहिए। ये नहीं कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको एक ही सरफेस के ऊपर चलते जाएं आप एक ही डायरेक्शन में, आपको डायरेक्शन को देखना है कि आपकी डायरेक्शन किस तरह से जा रही है। किस साइड पे जा रही है, उससे रिलेटेड आप उस चीज को नॉलेज को गेन करो और अपने आप को पॉलिश करते जाओ। जैसे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैं हमेशा नई से नई चीज लर्न करती रहती हूँ, मुझे बहुत शौक है नए से नया लर्न करने का। तो दैट्स व्हाई मैं यही आगे अपने आने वाले स्टूडेंट्स को भी कहूंगी, मैं यूसीपी में जितना देर स्टूडेंट्स को इस पे हैंड्स ऑन इनके करती हूँ इनके सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो ये बेटर काम कर सके, आगे अपॉर्चुनिटी उनके लिए ओपन हो, फ्यूचर में वो काम कर सके इसके ऊपर। तो मेरी बेटर यही चॉइस होती है कि ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास आए जो कि नॉलेज, बेसिक नॉलेज भी रखते हो इस चीज के ऊपर, और प्लस ये कि उनमें पैशन हो काम करने का।
2: सो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो जो सोच आपकी एक किसी सर्टेन चीज या प्रोडक्ट को लेकर है, उसको आप किस तरह डिजाइन करते हो, प्रेजेंट करते हो, दैट्स व्हाट मैटर इन विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन। और दूसरी चीज मरियम जो मैं देख रही थी रिसर्च करते हुए भी, एक और चीज आती है विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन के साथ, ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी बहुत मैटर करती है इसमें। तो बेसिकली ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी होती क्या है?
3: अच्छा, एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आपको, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि ब्रांड स्ट्रेटेजी क्या होती है और वो क्या का क्या रोल अदा करती है वो विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर। अब अगर आप देखें तो ब्रांड स्ट्रेटेजी ऐसी चीज है कि उसके अंदर आपके पास एक पूरी आउटलाइन होनी चाहिए। लाइक अगर सपोज कि अगर मैं कोई बेकरी का कोई भी आइटम जो है, कोई भी चीज जो है वो पब्लिक करना चाह रही हूँ, मार्केटिंग करना चाह रही हूँ, उसकी एडवर्टाइजमेंट करना चाह रही हूँ, पहले मैं उसके पीछे एक सोच होगी, उसके पीछे एक स्ट्रेटेजी होगी मेरी कि मैं अपने ब्रांड को किस तरह से इनहेंस करके मार्केट के अंदर सेल कर सकती हूँ, ठीक है। और फिर इसी तरह से अगर हम देखा जाए तो ब्रांड स्ट्रेटेजीज की कुछ इस तरह से स्ट्रेटेजीज होती हैं जो कि हम अडॉप्ट करते हैं जिससे हमारे पास प्रॉफिट आता है, या मार्केट लेवल पे हम उसको सोचते हैं, अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उसकी मार्केट रिस्पांस क्या मिलेगा हमें। तो इस तरह की थिंकिंग और थॉट्स के साथ मिलके जो हम काम कर रहे होते हैं उससे विजुअल हमें जो है वो एक बेनिफिट ये होता है उसका कि हम उससे गो थ्रू होके हम उसके ऊपर एक अच्छा एस्थेटिकली एक विजुअल क्रिएट करते हैं जिससे लोगों को अपील करें और वो इसको एज अ प्रोफेशन भी ज्वाइन कर सकें और इसके ऊपर मजीद काम कर सकें।
2: और मरियम अगर आप कोई भी विजुअल कम्युनिकेशन में डिजाइन या किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड करते हैं और उसके बाद उसके लिए काम भी कर रहे होते हैं, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो ट्रेंडिंग पे जाए, आपके काम को देखने के बाद लोग उसको देखना चाहें, लोगों को वो अपील कर रहा हो
3: वो एक्चुअली उसमें मरियम ये है कि आप ये देखें कि उसमें जितना भी आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के साथ काम करोगे, लाइक जाहिर है आपने ह्यूमन साइकी के साथ खेलना है कि उनको अट्रैक्ट करे, जैसे कोई किसी भी चीज की कोई सेल लगी हुई है, सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितने परसेंट ऑफ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं अपने ब्रांड के लिए। तो इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं और डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं जिनको अपना के हम जो है वो मार्केट के अंदर अपनी चीज को ज्यादा से ज्यादा अपीलिंग बना सकते हैं।
2: अच्छा मरियम, जब आपने सोच लिया था कि अब मैं पेंटिंग और कैलीग्राफी के साथ साथ इन अपनी आइडियाज को विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों तक पहुंचाऊंगी, तो वो क्या ऐसी चीजें थी, वो क्या ऐसे आइडिया या सोच या वो क्या ऐसा बेसिक पर्पस था जिसकी वजह से आपको एक मोटिवेशन मिलती रही कि आई विल डू दिस थिंग ऑन द टॉप ऑफ एवरी अदर थिंग, मुझे ये करना ही करना है?
3: बहुत ही ये भी बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने किया, क्योंकि मेरा जो पैशन है मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत ज़्यादा है ड्राइंग में, पेंटिंग में, आर्ट में। तो मैं इसकी हर चीज़ को देखते हुए मेरा ये था कि मैं शुरू से ही ना, मुझे नेचर बहुत इंस्पायर करती है, नेचर से इतनी इंस्पिरेशन है मेरी कि अभी मैंने रिसेंटली अपनी दो जो एग्जीबिशंस भी किए हैं वो इसी के ऊपर किए हैं मैंने, एक जो है रिजिलियंट ब्लूम पे किए, दूसरी मैंने विजुअल इम्प्रोवाइजेशन थ्रू नेचर पे की है। उसमें से मैंने बर्ड्स को बनाया, इम्प्रोवाइजेशन थ्रू नेचर में मैंने देखा कि नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट कैसे करती हूँ, वो कैसे हीलिंग प्रोसेस है मेरे लिए। दैट्स व्हाई मैंने इस लाइन को इसलिए चूज किया कि मुझे हील करता है, और आर्ट जो है वो आपको वाकई में हील करता है। अगर नेचर के आप करीब होते हो तो आपको बहुत हीलिंग पावर मिलती है उससे, जिससे आप बहुत सी चीजें डेवलप कर सकते हो।
2: दैट्स अ ग्रेट थिंग। और अगर जैसे मैं हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है ग्राफिक डिजाइनिंग का, विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन का, और मुझ जैसा बच्चा कोई या मुझ जैसे लोग जो विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन की बातें सुनने के बाद इम्प्रेस हो रहे हैं और वो कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं?
3: वो आए ज्वाइन करें हम मुझे यहाँ पे यूसीपी में, और मैं उनको प्रैक्टिस करवाऊंगी इसके ऊपर, और प्लस ये कि उनको देखूंगी कि वो कितना पैशन रखते हैं इस चीज के अंदर, देन मैं उनको लेके चलूंगी और उनको जो है वो बेसिक से लेके एडवांस तक उनको पॉलिश।
2: अच्छा मरियम, हमारी यूसीपी में फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन में हम क्या कुछ करवा रहे हैं?
3: हम इस टाइम बहुत कुछ करवा रहे हैं। हम जो है फिल्म एंड टीवी में जो है विजुअल डेवलपमेंट है, मैं उसको लेके चल रही हूँ। उसमें मैं किस तरह से विजुअली आप किस तरह से चीजों को देख रहे हो, उसकी एस्थेटिक्स को कैसे खूबसूरत बना सकते हो और उसको मजीद कितना इनहेंस कर सकते हो, ये सारा मैं इनको गो थ्रू करवा रही हूँ। प्लस इसके अलावा ब्रांड स्ट्रेटजीज के ऊपर काम कर रही हूँ मैं, कुछ उसके ऊपर वर्किंग कर रही हूँ, वो पढ़ा रही हूँ। और उसके अलावा जो है विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन, AI इनहेंस्ड विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन, जो कि जिसमें आप AI बेस्ड हम चीजें जो है उनको करवा रहे हैं। अब उसमें अब जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सारा AI से रिलेटेड भी जनरेट करेंगे डाटा, और उसको किस तरह से काम कर रहे हैं, उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है अपने काम के अंदर, ये सारा मैं उनको बोलती।
2: अच्छा, जैसे अभी आप AI की बात कर रही थी, तो AI से क्या डिफरेंस आया है?
3: इससे आपका जो टाइम है वो स्पीड अप आप हो गया है। लाइक कि आप जल्दी में कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो, बनाना चाह रहे हो, तो आपको जैसे बहुत ज्यादा टाइम लगता था मैनुअली काम करने में, वो चीज सोचने में, आपके पास अब सब चीजें सेकंड्स में मिल जाती हैं आपको, और उसको आप किस तरह से डेवलप कर सकते हो, खुद ही आपकी अपनी थिंकिंग है। मैं ये नहीं कह रही कि आप टोटली रिलाय करो उसके ऊपर, लेकिन अपनी सोच और अपनी थिंकिंग को उसमें जरूर इस्तेमाल करो, जरूर यूज करो उससे, कि किस तरह से आप उसको बेटर कर सकते हो और उसका कैसे आइडियाज को पॉलिश करके और मजीद आइडियाज लेके किस तरह से पॉलिश करके आप बना सकते हो मार्केट में।
2: बहुत अच्छी बात बताई मरियम आपने, और इसके साथ ही हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आप लोग सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, मैं हूँ मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ।
4: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
2: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6, मैं हूँ मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम फैकल्टी के आर के साथ। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में मेहमान है मरियम इद्रीस, जो कि फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में लेक्चरर हैं और विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन की एक्सपर्ट हैं। मरियम, जैसे अभी ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे, आप बता रही थी कि आप बहुत सारी एग्जीबिशंस करती हैं, आप आर्ट और कैलीग्राफी में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि पेंटिंग करते हुए आपने AI की हेल्प ली हो?
3: अच्छा, ऐसा है कि AI से अब तो जब अपने आइडियाज जनरेट करने हों, हेल्प तो चल ही रही है, लाइक कि वो आप लेते ही हो। हर आर्टिस्ट जो है वो इस तरह से सोच रहा है कि आप हेल्प ले लो ChatGPT से आइडियाज के तौर पे, या लियोनार्डो AI से, या मिडजर्नी से। इसमें आप आइडियाज से हेल्प ले सकते हो AI से। मैंने ली है जो वो इस तरह से ली है कि मैंने अपनी कुछ पेंटिंग्स जो हैं उनको AI में जनरेट किया है, और वो बिल्कुल टोटली वो मेरे लिए एक इतना जबरदस्त आइडिया जनरेट किया उन्होंने कि जब मैंने अपनी पेंटिंग उनको दी और प्रॉम्प्ट दिया, तो उसके बाद मुझे वहां से बहुत ही अच्छा एक इमेज क्रिएट हुआ मिला रिगार्डिंग माई टॉपिक, माई थिंकिंग, जो मैं सोच रही थी, मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा आइडिया उसने दिया। लेकिन फिर मैंने उसको प्रॉम्प्ट्स अच्छे अच्छे दिए, और प्लस ये कि मैंने उसके अंदर ऐसे प्रॉम्प्ट्स लगाए जिससे मुझे और क्रिएटिविटी इनहेंस होके मेरी सामने आए। तो मैंने बेसिकली AI को जो है वो वाकई में इसको अपने लिए काफी हेल्पफुल पाया है। लेकिन बात वहीं पे आती है कि आप AI से हेल्प लो, लेकिन आपको इसके अंदर जो अपना इनपुट है वो जरूर देना है, अपना माइंड जरूर यूज करना है। अगर आप अच्छे प्रॉम्प्ट्स दोगे, अपना माइंड यूज करोगे, आइडियाज जनरेट करेंगे, उस आइडियाज पे आप थिंकिंग करोगे, सोचोगे, उसको बनाओगे, तो ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी होगी कि आप किस तरह से इनहेंस करके अपनी चीजों को डेवलप कर रहे हैं।
2: जी बिल्कुल, ऐसे ही है। और प्रॉम्प्ट्स देने के लिए यूजुअली आपको आपके टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं, और फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में हमारे सारे टीचर एक्सपर्ट्स हैं। जैसे अभी हमारे पास मरियम इद्रीस, एक्सपर्ट्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन है। मरियम, हमारी फैकल्टी में हम किस तरह से स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं?
3: अच्छा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे था क्वेश्चन, ये कि हमारी फैकल्टी के अंदर बेसिकली जितने भी हमारे टीचर्स हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, और बहुत जबरदस्त तरीके से स्टूडेंट्स को पॉलिश कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आपने जीरो से लेके, आपने बेसिक से लेके किस तरह से एडवांस में जाना है और कैसे अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट करना है। तो ये वेरी गुड है कि हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो बहुत ही इस बात को लेके बहुत कीन होते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो काफी पॉलिश होके यहाँ से निकले, ताकि मार्केट में उनको कोई चीज फेस ना करनी पड़े ऐसी कि जिससे वो कॉन्फिडेंस लैक करे उनका, या किसी भी तरह से कुछ इस तरह से हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो मार्केट में जा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, मीडिया के अंदर भी काम कर रहे हैं, मार्केट में भी काम कर रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स में काम कर रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड।
2: और इसी के साथ सामने मैं आपको बताना चाहूंगी कि फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में BS और MS के एडमिशन अभी जारी हैं। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं, अप्लाई करें, अपने टेस्ट में इनरोल करें, एंड उसके बाद आपका एडमिशन का जो पूरा प्रोसीजर है उसको फॉलो अप करें, बिकॉज फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन ये मेक श्योर करता है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे ग्रेजुएट्स हर तरह से वेल पॉलिश्ड हों और प्रोफेशनली उनको बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाता है। मरियम, प्रोग्राम के अहतमाम से पहले मैं आपसे आपका मैसेज लेना चाहूंगी।
3: ओके, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इस फील्ड के अंदर आए आप लोग और आके यहाँ पे अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करें। आप बेसिक नॉलेज के साथ आते हैं, तो आपको यहाँ से बेसिक के अलावा आपको एडवांस लेवल पे भी सिखाया जा रहा है, और प्लस ये कि इसमें आप अपना अपनी बिल्ड करें स्किल्स को और अपना पोर्टफोलियो इसमें बनाएं और मार्केट में अपने आप को मनवाएं।
2: थैंक यू सो मच मरियम, थैंक यू सो मच फॉर सच एन अमेजिंग टॉक। और फैकेलिटी आर के साथ मेरा और आपका साथ अभी के लिए इतना ही, फिर अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। मैं हूँ मरियम इरशाद, लेक्चरर फैकेलिटी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। अल्लाह
5: हाफिज़।
6: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
7: Fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP ki duniya

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD Dunia.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: अगर कभी मेरी याद आए।
1: लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

0: University of Central Punjab, FM 92.6, UCP Ki Duniya.
1: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With Radio Station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.ek. FM 92.6 Life Station of the Nation.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: सीधी की दुनिया।
1: एक नया अंदाज,
2: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
2: एक नई लगन।
1: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: यूसीपी की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं एफएम 92.6।
1: सुनते रहिए।
3: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। इस प्रोग्राम के जरिए हम बात करते हैं फैकल्टी मेंबर्स से, उनकी अचीवमेंट के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, पीआर, एड, फिल्म, टीवी के बारे में और बहुत सारी नई नई मालूमात के बारे में। आज हमारे साथ प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद हैं, उनका ताल्लुक विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन से है। वो बेसिकली एक ट्रेनर भी हैं, डिजाइनर भी हैं, एजुकेटर भी हैं और वो विजुअल कम्युनिकेशन में बहुत महारत रखती हैं। So without any delay, I'm going to introduce you guys with Miss Maryam Idris, lecturer faculty of media and mass communication. Assalam alaikum.
4: Wa alaikum assalam. Kaisi hain aap?
3: Main theek hoon, aap kaisi hain?
4: Acha, alhamdulillah.
3: मुझे ये बताएं कि आपका बेसिकली, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन अभी करवाया कि आप विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन में बहुत एक्सपर्टीज रखती हैं, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? कहाँ सोचा, कब सोचा कि मुझे विजुअल कम्युनिकेशन में कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ में ग्राफिक डिजाइनिंग में कुछ करना है?
4: पहले तो आपको मैं ये चीज बता दूं कि मैं विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन मेरा एक पैशन था स्टार्ट से ही। मैं ड्रॉइंग मेरी बहुत ज्यादा अच्छी थी, तो मैंने शुरू से ही इस चीज को अपने अंदर देखा, बाय बॉर्न कह लें, गिफ्टेड है ये चीज। तो मैंने इस चीज को देखने के बाद, मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको भी था कि इसको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है इसमें, तो आप क्यों ना इसी फील्ड को ज्वाइन करो। तो मैंने इस फील्ड को इस तरह से ज्वाइन किया कि मैंने अपना जो इसमें करियर है वो भी इसी में ही अपने आप को परसू किया। और सबसे पहले मैंने इसमें जो है आर्ट वर्क करना स्टार्ट किया। मैं शुरू से पेंटिंग बहुत करती हूँ और विजुअल आर्टिस्ट भी हूँ, तो इस वजह से मैंने उसमें जितना भी वर्क है वो किया है। उसके बाद जब मैंने इसको प्रोफेशनली लिया अपनी स्टडीज में, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसमें कुछ प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में कुछ करूं। तो पेंटिंग तो मेरी हॉबी है और जो है वो एज अ पैशन भी है, वो मैं करती हूं, कैलीग्राफी भी करती हूं। लेकिन जो विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन है वो बेसिकली मेरा इंटरेस्ट, बहुत वास्ट सब्जेक्ट था ये, तो मेरा इंटरेस्ट भी बहुत था, तो मैंने इसको एज अ प्रोफेशन अपनी स्टडीज इसमें की। फिर उसके बाद जब मैंने इसमें बीएफए कर लिया, तो उसके बाद मैंने फिर मास्टर्स भी इसी में, एमएफए भी इसी में किया। तो इसी तरह से मेरा जो करियर है वो स्टार्ट हुआ प्रोफेशनली। इसमें मैंने किस तरह से अपने आप को परसू किया और इनहेंस किया चीजों के थ्रू, और मैंने सीखा, क्योंकि लर्निंग जो है वो प्रोसेस चलता रहता है लाइफ के साथ। तो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप जिस एज में भी हैं, जिस टाइम में भी हैं, आप लर्निंग प्रोसेस चलता ही रहता है, आप सीखते रहते हैं।
3: अच्छा, अगर जैसे आप बात कर रही थी विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में कि आपको बहुत इंटरेस्ट था, आप पेंटिंग करती थी, आप कैलीग्राफी करती हैं, तो एक्चुअली में विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन होता क्या है, क्या ये
4: एक्चुअली हम अगर डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन को देखें, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है ये, कि आपको कोई ऐसी चीज क्या आपने कुछ बनाना है, कुछ क्रिएट करना है, एक प्रॉब्लम की तरह आपके पास, आपने उसको किस तरह से विजुअली या एस्थेटिकली उसको किस तरह से डिजाइन करना है, बताना है, विजुअल कैसे क्रिएट करना है, ताकि आप अपना मैसेज जो है वो आप ऑडियंस तक को कन्वे कर सकें। बेसिकली इसके अंदर जो है विजुअल्स, आप वो देखेंगे तो उसके अंदर आपके पास टाइपोग्राफी एक टाइप फेसेस होते हैं जो कि यूज होते हैं इसमें विजुअल डिजाइन में, वो यूज होते हैं, कलर थ्योरी होती है इसके अंदर, और बहुत इस तरह के मीडियम है जो कि हम कंबाइन करके उसको विजुअल्स को क्रिएट करते हैं, 2D सरफेस पे, 3D मोशंस में होते हैं। और इसमें बेसिकली जितना भी आपके पास मटेरियल है वो सब आपकी एस्थेटिक, आपकी जो है वो काम करनी चाहिए, उससे आप जो है वो गो थ्रू करके इसको बनाते हैं। और मैं एक चीज यहाँ पे कहूंगी कि ग्राफिक डिजाइन बेसिकली विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन की ही एक वो है फॉर्म। इसमें आप जितना अपने आप को, जरूरी नहीं है कि आप एक आर्टिस्ट हो या आपके अंदर, आप कुछ भी, जो भी एस्थेटिकली अपने माइंड में खूबसूरती को सराहता है, ऑफकोर्स हर एक को ही पसंद है ये चीज, तो जैसे ही आपको ये चीज लाइक करती है या क्लिक करती है, तो आप उसमें जरूर कोई भी इसमें वो कर सकता है इसमें काम ना, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप आर्टिस्ट नहीं है तो आप आर्टिस्ट हैं तो आप कर सकते हैं। हर कोई जिसमें एस्थेटिकली सेंस है इस तरह के काम करने की वो डिजाइन में काम कर सकता
3: है। मरियम अभी आप जैसे बता रही थी ग्राफिक डिजाइनिंग भी इसी से मिलती जुलती है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग और विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है?
4: नहीं, इनको एक ही कहेंगे लेकिन उसमें भी कम्युनिकेशन ही है, ठीक है। इसमें ग्राफिक का मीन्स कि आपके पास एक आप ऐसी एक सरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके ऊपर आपने अपना मैसेज कन्वे करना, तो उसको किस तरह से 2D और 3D से मैसेज अपना कन्वे करना है आपने, तो वहां पे आप ग्राफ को बनाते हो। जाहिर है आपने जब पुराने जो टाइम है ओल्ड टाइम्स में अगर एरा में देखें तो ग्राफ का मीनिंग यही होता था कि आप पुराने कोई टाइम में कोई काम कर रहे हैं तो उसको किस तरह ग्राफिकली विजुअल्स के थ्रू आप अपनी एक्सप्लेन करते थे लैंग्वेज को। लैंग्वेज उस वक्त यही यूज होती थी केव आर्ट के टाइम में, तो उसकी वजह से आगे जो है उसको हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, उसको ग्राफिकली बना के कैसे कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हम ब्रांडिंग करते हैं किसी भी चीज की, तो उसको हमने ब्रांडिंग की थ्रू आउट उसमें जो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें हमारी कलर थ्योरी आ जाती है, हमारे कलर्स के अलावा हमारे टाइपोग्राफी इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें मिला के ही डिजाइन को बनता है। और उसको विजुअल अगर देखें तो विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन बेसिकली ग्राफिक डिजाइन की एक फॉर्म है।
3: और इसकी ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग कितनी जरूरी होती है?
4: ये डिपेंड करता है कि आप अगर अपने आपको मार्केट में, कुछ लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता इस चीज के अंदर और कुछ लोग ब्रांड अपने लॉन्च करते हैं या उसकी ब्रांडिंग करते हैं उसकी स्ट्रेटेजी को देखते हुए, हम इस तरह रिकमेंड करते हैं कि आप किसी भी इदारे में या खुद से अगर आप कर रहे हैं तो लर्न कर रहे हैं। कुछ लोग तो यूट्यूब चैनल से भी लर्न करते हैं, हमारे यहाँ पे यूसीपी में आपने देखा जैसे विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन में हमारे स्टूडेंट्स इतनी महारत हासिल करके कैंपेन डिजाइन कर रहे हैं, उसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उसको लॉन्च कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो इसी तरह से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमारे पास डिफरेंट एस्थेटिकली उसको बनाने के बाद अपनी प्रोडक्ट्स को किस तरह से लॉन्च कर रहे हैं, तो ये काम सिर्फ इंटरेस्ट बेस ही हो सकता है, क्योंकि जिसमें आपका इंटरेस्ट है अगर आप प्रोफेशनली इसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो इट्स वेल एंड गुड।
3: थैंक यू सो मच फॉर सच एन इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन ओवर द थिंग के किस तरह से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप लोग सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। इसी के साथ हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।
2: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
3: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6, मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मिस मरियम इद्रीस जो कि लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन है और विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन की एक्सपर्ट है। ब्रेक में जाने से पहले जैसे मरियम हम बात कर रहे थे विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन की, ग्राफिक डिजाइनिंग की, और आप इसका डिफरेंस बहुत अच्छे से बता रही थी, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन की जब बात होती है इसके लिए कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो यूज किए जा रहे होते हैं?
4: एक्चुअली इसके लिए जो है ना वो अडोब प्रीमियर और अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर, ये सॉफ्टवेयर जो है प्रोफेशनली यूज किए जा रहे हैं। लेकिन आजकल AI का थोड़ा दौर है, हमारे पास एरा है और उसमें सब जो है AI से रिलेटेड जैसे कैनवा यूज कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक काम आप स्टार्ट करते हैं वो इन प्रोफेशनल वर्क जो है वो इसी पे ही होता है। चाहे आप ये देखें कि AI आ भी गया लेकिन फिर भी इनकी अभी जो है इम्पोर्टेंस वो कम नहीं हुई। आप जब भी AI से कोई चीज जनरेट करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ कर रहे हैं, जैसे Midjourney पे आप इमेजेस जनरेट कर रहे हैं, जैसे आप Leonardo AI यूज कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है ChatGPT और हमारे पास इसके इससे रिलेटेड जो बाकी Google Gemini है, ये सब यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब बहुत ज्यादा फास्ट काम हो गया है और मेरे ख्याल से अब के दौर के अंदर जो है जो एक्सपर्ट है इस चीज का भी वो माना जा रहा है, वो अपने आप को मनमा रहा है मार्केट के अंदर। तो मेरे ख्याल से आपको 3D में सोचना चाहिए, आपको 3D में होके काम करना चाहिए। ये नहीं कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको एक ही सरफेस के ऊपर चलते जाएं, आप एक ही डायरेक्शन में, आपको डायरेक्शन को देखना है कि आपकी डायरेक्शन किस तरह से जा रही है, किस साइड पर जा रही है, उससे रिलेटेड आप उस चीज को नॉलेज को गेन करो और अपने आप को पॉलिश करते जाओ। जैसे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैं हमेशा नई से नई चीज लर्न करती रहती हूँ, मुझे बहुत शौक है नए से नया लर्न करने का। तो दैट्स वाई मैं यही आगे अपने आने वाले स्टूडेंट्स को भी कहूंगी, मैं यूसीपी में जितना देर स्टूडेंट्स को इस पे हैंड्स ऑन इनके करती हूँ इनके सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो ये बेटर काम कर सके, आगे अपॉर्चुनिटी उनके लिए ओपन हो, फ्यूचर में वो काम कर सके इसके ऊपर। तो मेरी बेटर यही चॉइस होती है कि ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास आए जो कि नॉलेज, बेसिक नॉलेज भी रखते हो इस चीज के ऊपर, और प्लस ये कि उनमें पैशन हो काम करने का.
3: सो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो जो सोच आपकी एक किसी सर्टेन चीज या प्रोडक्ट को लेकर है, उसको आप किस तरह डिजाइन करते हो, प्रेजेंट करते हो, दैट्स व्हाट मैटर इन विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन. और दूसरी चीज मरियम, जो मैं देख रही थी रिसर्च करते हुए भी, एक और चीज आती है विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन के साथ, ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी बहुत मैटर करती है इसमें. तो बेसिकली ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी होती क्या है?
4: अच्छा, एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आपको, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि ब्रांड स्ट्रेटेजी क्या होती है और वो क्या रोल अदा करती है वो विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर. अब अगर आप देखें तो ब्रांड स्ट्रेटेजी ऐसी चीज है कि उसके अंदर आपके पास एक पूरी आउटलाइन होनी चाहिए. लाइक अगर सपोज कि अगर मैं कोई बेकरी का कोई भी आइटम जो है, कोई भी चीज जो है वो पब्लिक करना चाह रही हूँ, मार्केटिंग करना चाह रही हूँ, उसकी एडवर्टाइजमेंट करना चाह रही हूँ, पहले मैं उसके पीछे एक सोच होगी, उसके पीछे एक स्ट्रेटेजी होगी मेरी कि मैं अपने ब्रांड को किस तरह से एनहांस करके मार्केट के अंदर सेल कर सकती हूँ. ठीक है, और फिर इसी तरह से अगर हम देखा जाए तो ब्रांड स्ट्रेटेजीज की कुछ इस तरह से स्ट्रेटेजीज होती हैं जो कि हम अडॉप्ट करते हैं, जिससे हमारे पास प्रॉफिट आता है या मार्केट लेवल पे हम उसको सोचते हैं. अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उसकी मार्केट रिस्पॉन्स क्या मिलेगा हमें. तो इस तरह की थिंकिंग और थॉट्स के साथ मिलकर जो हम काम कर रहे होते हैं, उससे विजुअल हमें जो है वो एक बेनिफिट ये होता है उसका कि हम उससे गो थ्रू होके हम उसके ऊपर एक अच्छा एस्थेटिकली एक विजुअल क्रिएट करते हैं, जिससे लोगों को अपील करे और वो इसको एज अ प्रोफेशन भी ज्वाइन कर सकें और इसके ऊपर मजीद काम कर सकें.
3: और मरियम, अगर आप कोई भी विजुअल कम्युनिकेशन में डिजाइन या किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड करते हैं और उसके बाद उसके लिए काम भी कर रहे होते हैं, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो ट्रेंडिंग पे जाए, आपके काम को देखने के बाद लोग उसको देखना चाहें, लोगों को वो अपील कर रहा हो
4: वो एक्चुअली. उसमें मरियम ये है कि आप ये देखें कि उसमें जितना भी आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के साथ काम करोगे, लाइक जाहिर है आपने ह्यूमन साइकी के साथ खेलना है कि उनको अट्रैक्ट करे. जैसे कोई सी भी चीज की कोई सेल लगी हुई है, सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितने परसेंट ऑफ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं अपने ब्रांड के लिए, तो इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं और डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं जिनको अपना के हम जो है वो मार्केट के अंदर अपनी चीज को ज्यादा से ज्यादा अपीलिंग बना सकते हैं.
3: अच्छा मरियम, जब आपने सोच लिया था कि अब मैं पेंटिंग और कैलीग्राफी के साथ साथ इन अपनी आइडियाज को विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों तक पहुंचाऊंगी, तो वो क्या ऐसी चीजें थी, वो क्या ऐसे आइडिया या सोच, या वो क्या ऐसा बेसिक पर्पस था जिसकी वजह से आपको एक मोटिवेशन मिलती रही कि आई विल डू दिस थिंग ऑन द टॉप ऑफ एवरी अदर थिंग, मुझे ये करना ही करना है?
4: बहुत ही ये भी बहुत जबरदस्त सवाल आपने किया, क्योंकि मेरा जो पैशन है, मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत ज्यादा है ड्राइंग में, पेंटिंग में, आर्ट में. तो मैं इसकी हर चीज को देखते हुए, मेरा ये था कि मैं शुरू से ही ना, मुझे नेचर बहुत इंस्पायर करती है. नेचर से इतनी इंस्पिरेशन है मेरी कि अभी मैंने रिसेंटली अपनी दो जो एग्जीबिशंस भी की हैं उसी के ऊपर की है. मैंने एक जो है रिजिलियंट ब्लूम पे की है, दूसरी मैंने विजुअल इम्प्रोवाइजेशन थ्रू नेचर पे की है. उसमें से मैंने बर्ड्स को बनाया है. इम्प्रोवाइजेशन थ्रू नेचर में मैंने देखा कि नेचर के साथ मैं अपने आप को कनेक्ट कैसे करती हूँ, वो कैसे हीलिंग प्रोसेस है मेरे लिए. दैट्स व्हाई मैंने इस लाइन को इसलिए चूज किया कि मुझे हील करता है. और आर्ट जो है वो आपको वाकई हील करता है. अगर नेचर के आप करीब होते हो तो आपको बहुत हीलिंग पावर मिलती है उससे, जिससे आप बहुत सी चीजें डेवलप कर सकते हो.
3: दैट्स अ ग्रेट थिंग. और अगर जैसे मैं हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है ग्राफिक डिजाइनिंग का, विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन का, और मुझ जैसा बच्चा कोई या मुझ जैसे लोग जो विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन की बातें सुनने के बाद इम्प्रेस हो रहे हैं और वो कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं?
4: वो आए ज्वाइन करें हम मुझे यहाँ पे यूसीपी में, और मैं उनको प्रैक्टिस करवाऊंगी इसके ऊपर, और प्लस ये कि उनको देखूंगी कि वो कितना पैशन रखते हैं इस चीज के अंदर. देन मैं उनको लेके चलूंगी और उनको जो है वो बेसिक से लेकर एडवांस तक उनको पॉलिश.
3: अच्छा मरियम, हमारी यूसीपी में फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन में हम क्या कुछ करवा रहे हैं?
4: हम इस टाइम बहुत कुछ करवा रहे हैं. हम जो है फिल्म एंड टीवी में जो है विजुअल डेवलपमेंट है, मैं उसको लेके चल रही हूँ. उसमें मैं किस तरह से विजुअली आप किस तरह से चीजों को देख रहे हो, उसकी एस्थेटिक्स को कैसे खूबसूरत बना सकते हो और उसको मजीद कितना इनहेंस कर सकते हो, ये सारा मैं इनको गो थ्रू करवा रही हूँ. प्लस इसके अलावा ब्रांड स्ट्रेटजीज के ऊपर काम कर रही हूँ मैं, कुछ उसके ऊपर वर्किंग कर रही हूँ, वो पढ़ा रही हूँ. और उसके अलावा जो है विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन, AI एनहांस्ड विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन, जो कि जिसमें आप AI बेस्ड हम चीजें जो है उनको करवा रहे हैं. अब उसमें अब जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सारा AI से रिलेटेड भी जनरेट करेंगे डाटा, और उसको किस तरह से काम कर रहे हैं, उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है अपने काम के अंदर, ये सारा मैं उनको बोलती
3: हूं. अच्छा, जैसे अभी आप AI की बात कर रही थी, तो AI से क्या डिफरेंस आया है?
4: इससे आपका जो टाइम है वो स्पीड अप अप हो गया है, लाइक कि आप जल्दी में कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो, बनाना चाह रहे हो, तो आपको जैसे बहुत ज्यादा टाइम लगता था मैनुअली काम करने में, वो चीज सोचने में, आपके पास सब चीजें सेकंड्स में मिल जाती हैं आपको, और उसको आप किस तरह से डेवलप कर सकते हो, खुद ही आपकी अपनी थिंकिंग है। मैं ये नहीं कह रही कि आप टोटली रिलाई करो उसके ऊपर, लेकिन अपनी सोच और अपनी थिंकिंग को उसमें जरूर इस्तेमाल करो, जरूर यूज करो उससे, कि किस तरह से आप उसको बेटर कर सकते हो और उसका कैसे आइडियाज को पॉलिश करके और मजीद आइडियाज लेके किस तरह से पॉलिश करके आप बना सकते हो मार्केट में।
3: बहुत अच्छी बात बताई मरियम आपने, और इसके साथ ही हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आप लोग सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ।
5: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
3: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6, मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में मेहमान है मरियम इद्रीस, जो कि फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में लेक्चरर हैं और विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन की एक्सपर्ट हैं। मरियम, जैसे अभी ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे, आप बता रही थी कि आप बहुत सारे एग्जीबिशंस करती हैं, आप आर्ट और कैलीग्राफी में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि पेंटिंग करते हुए आपने AI की हेल्प ली हो?
4: अच्छा, ऐसा है कि AI से अब तो जब हम अपने आइडियाज जनरेट करने हों, हेल्प तो चल ही रही है, लाइक कि वो आप लेते ही हो। हर आर्टिस्ट जो है वो इस तरह से सोच रहा है कि आप हेल्प ले लो ChatGPT से आइडियाज के तौर पे, या लियोनार्डो AI से, या मिडजर्नी से। इसमें आप आइडियाज से हेल्प ले सकते हो AI से। मैंने लिए जो वो इस तरह से लिए कि मैंने अपनी कुछ पेंटिंग्स जो हैं उनको AI में जनरेट किया है, और वो बिल्कुल टोटली वो मेरे लिए इतना जबरदस्त आइडिया जनरेट किया उन्होंने कि जब मैंने अपनी पेंटिंग उनको दी और प्रॉम्प्ट दिया, तो उसके बाद मुझे वहां से बहुत ही अच्छा एक इमेज क्रिएट हुआ मिला रिगार्डिंग माय टॉपिक, माई थिंकिंग, जो मैं सोच रही थी, मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा आइडिया उसने दिया। लेकिन फिर मैंने उसको प्रॉम्प्ट्स अच्छे अच्छे दिए, और प्लस ये कि मैंने उसके अंदर ऐसे प्रॉम्प्ट्स लगाए जिससे मुझे और क्रिएटिविटी इनहेंस होके मेरी सामने आए। तो मैंने बेसिकली AI को जो है वो वाकई में इसको अपने लिए काफी हेल्पफुल पाया है। लेकिन बात वहीं पे आती है कि आप AI से हेल्प लो, लेकिन आपको इसके अंदर जो अपना इनपुट है वो जरूर देना है, अपना माइंड जरूर यूज करना है। अगर आप अच्छे प्रॉम्प्ट्स दोगे, अपना माइंड यूज करोगे, आइडियाज जनरेट करेंगे, उस आइडियाज पे आप थिंकिंग करोगे, सोचोगे, उसको बनाओगे, तो ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी होगी कि आप किस तरह से इनहेंस करके अपनी चीजों को डेवलप कर रहे हैं।
3: जी बिल्कुल ऐसा ही है, और प्रॉम्प्ट्स देने के लिए यूजुअली आपको आपके टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं, और फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में हमारे सारे टीचर एक्सपर्ट्स हैं। जैसे अभी हमारे पास मरियम इद्रीस, एक्सपर्ट्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन है। मरियम, हमारी फैकल्टी में हम किस तरह से स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं?
4: अच्छा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे था क्वेश्चन, ये कि हमारी फैकल्टी के अंदर बेसिकली जितने भी हमारे टीचर्स हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, और बहुत जबरदस्त तरीके से स्टूडेंट्स को पॉलिश कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आपने जीरो से लेके, आपने बेसिक से लेके किस तरह से एडवांस में जाना है और कैसे अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट करना है। तो ये वेरी गुड है कि हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो बहुत ही इस बात को लेके बहुत कीन होते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो काफी पॉलिश होके यहाँ से निकले, ताकि मार्केट में उनको कोई चीज फेस ना करनी पड़े ऐसी कि जिससे वो कॉन्फिडेंस लैक करे उनका, या किसी भी तरह से कुछ इस तरह से हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो मार्केट में जा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, मीडिया के अंदर भी काम कर रहे हैं, मार्केट में भी काम कर रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स में काम कर रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड।
3: और इसी के साथ सामाई मैं आपको बताना चाहूंगी कि फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में BS और MS के एडमिशन अभी जारी हैं। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं, अप्लाई करें, अपने टेस्ट में इनरोल करें, एंड उसके बाद आपका एडमिशन का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो अप करें, बिकॉज फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन ये मेक श्योर करता है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे ग्रेजुएट्स हर तरह से वेल पॉलिश्ड हों और प्रोफेशनली उनको बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाता है। मरियम, प्रोग्राम के अख्ताम से पहले मैं आपसे आपका मैसेज लेना चाहूंगी।
4: ओके, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इस फील्ड के अंदर आए आप लोग और आके यहाँ पे अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करें। आप बेसिक नॉलेज के साथ आते हैं, तो आपको यहाँ से बेसिक के अलावा आपको एडवांस लेवल पे भी सिखाया जा रहा है, और प्लस ये कि इसमें आप अपना अपनी बिल्ड करें स्किल्स को और अपना पोर्टफोलियो इसमें बनाएं और मार्केट में अपने आप को मनवाएं।
3: थैंक यू सो मच मरियम, थैंक यू सो मच फॉर सच एन अमेजिंग टॉक। और फैकल्टी आर के साथ मेरा और आपका साथ अभी के लिए इतना ही, फिर अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया, मैं हूँ मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। अल्लाह हाफिज।
6: That which will be.
7: مسلمانی که داند رمز دین رو نساید پیش غیر الله جبین رو اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
6: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے UCP کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

That's why we are here. We are UCP ki duniya FM 92.6.

0: न्यूज़। मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज़ बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

این صدای لاهور است، این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید FM 92.6

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबिल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
2: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।